बिल्कुल हमने समझ दी ठीक हुआ के सीखो थोड़ा मैं सीखो समझ दी स्कूल में।